ऐसी उडारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारियां दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उडारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नू बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जुन साहब अपने शब्द

0: प्रभा को समझायो इम कह के लोक पठायो।
1: मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया ता दुष्ट दमन जी कहते नहीं संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान का बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रहांगा जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार विच भेज रहे हैं।

दुष्ट दमन जी उस बैवान विच बैठे ने, वो बैवान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिन्हों आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत दे असी वापस आए, इत्थे आराम कीता, इत्थों ए बेबान तुरे आ किथे जा पहुंचे है। गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले आत्मक मंडला वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने। आत्मक मंडला वाले खुश हो रहे ने। अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनस्पति खिड़ गई, मानो अज दुनिया दा भार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़ियां बाद हर पासे खबर फैल गई कि माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, ते कलगीधर पातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती से होया। मुरपित पूर

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारां संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं भटका, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रहते। शस्त्र विद्या सखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नियां, होर भी कई। अज आप जी दे नाल बाबा जी आप ही ओ सीन सांझा करान जिथे जाना चाहनी हां। एक दिन बाबा दीप सिंह जी संगत दे जूठे कौले मांजदे पे सी, अज ये गुण लै जाना बाबा दीप सिंह होने ते कौले मांजन। बाबा ही कौले मांजदे पे, कोला हाथ चे नाल सिमरन नाल कोला, नाल सिमरन नाल कोला। इन्नी क लिव लग के कोला मांजदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नू 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे। बाबा जी का उधर लिव जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी दे, जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ते कहंदे कौला हाथ विच ही ए सवा नाल लिबड़िया, हाथ भी लिबड़े ने सवा दे, ते डंडौत करके मालक नू कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े। बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघा नू होना, कहंदे वीर सिंह कोले मांजदा पे। बाबा जी तुहाडी कृपा नाल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा नाल, ते तन गुरु गोबिंद

आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है उन्हां आख्या जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नूं जांदिआं नहीं देखिआ। मन विच भरम हो गया राणी कित्थे जांदी है मैनू दसण तों बगैर। अज दूजा दिन होया इन्हें सोचिआ भई हुण मैं रात नूं ख्याल रखना है, सौना नहीं, देखना है राणी।

0: भज गोविंद भूल मत जाओ।
1: इथे कीर्तनी समाप्ति कर दें, कीर्तन करद बाणी पढ़द आप जी आनंद सेवकंद को बेंत भुला हुई होगी आप जी बख्शन योग हो भुला चुका लिखे मां आयो संगत वालों परम पूज सिंह साहब जी वालों बेंत माया शोध पेठ हाजिर पातशाह जी जिन्हें खजाने जमाए सुख जाने भरपूर कर रहे सत खालसा जी काज राश कर रहे हुक्म होया जी पंच मिनट का शब्द मन तिकर के कीर्तन कर जाइए। सवैये महले चौथे के जीत विचों एक है सच साज

0: के साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पीरनी दी चुगी विच पहुंचे भगवान, जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जाऊं। कुछ आदास छाया पीलनी ने, त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना, नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जे। पीरनी भुख लगी है, आखो श्रीवाल। पीरनी डाढ़ी भुख लगी है, कुछ खिला। रब नू बड़ी भुख लगी है। बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी महाराज, प्राप्ति वाले महापुरुष, नाम जप के नाम दी प्राप्ति। नाम जपना होर चीज है, नाम दी प्राप्ति होर। जेडे परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई, उन्हां दे भी चरण चुमी है। तुरे तां हन जेड़ा तुरया है, ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है। कदे ना कदे सी, ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरया ही नहीं है, वो पहुंच कि नहीं सकता। गली बाती तो पहुंचया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है, पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातर से जाइए। गल्लां नाल अजकल दी दुनिया गल्लां नाल ज्ञान चाहुंदी है। पर भाई महापुरुषां दा कथन है, गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलदा। ज्ञान ना गली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। ए तो बड़ी करड़ी मंत्र है, औखी काटी। पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साईं दे मिलन दे कर्म चंगे, फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान न गली ढूंढिए, कथना करड़ा सार, कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुकम। कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी है। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा, ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी, आखो श्री वाहिगुरु। महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी। चार पदार्थ जे को मांगे, फिर हजूर कहंदे सात जना की सेवा लगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है, वह दस लेंदी है, अज रब तुठा है, अज रब रुस गया है, चलो मना। उस माता कोल चलिए, मैं रब नूं मनाउण वास्ते, रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन, पर अजे ज़ियारत नहीं होई। कियो सिंगार मिलन के ताहीं।

16 किए सिंगार के अंजन पाजया जे घर आवे कंत सबो कुछ पाइए हरे हां कंते बाज सिंगार सब व्यर्थ आ जाइए। पने पाछा धन गुरु अर्जुन देव दाता जे साई घर नहीं आया ता सिंगार किस लेके ते गुरु नानक दा प्यार अंदर आके नहीं वसया ते दुनियावी पदार्थ किसे लिखे नहीं किसे लिखे फरी दे दिल च खिच पई लबदा लबदा इस माता कोल पहुंच गया। आ बेटा फरीद अज किवें आए मां मैं सुने है तू दस देंदी है अज रब टुटा है या अज रब रुस गया है मैनु भी दस रब नू मनाण वास्ते कई तरह दियां गालना गालियां पर मेरा साई अजे नहीं मनीजिया रुसिया फिरदा है पर तू दस। तो इस माता ने किया बेटा फरीद बैठ जा बैठ गया। तो माई प्राप्ति वाली सी प्राप्ति वाली बाबा जी बचन कर रहे सन भाई गुणा दा पूजन गुणा दा पूजन कई माइया ऐसिया उच्च जीवन वालिया सिमरन वालिया जिन्हां दे दर्शन कीते चेते आउंदा है सतनाम सूरबीर माता भागो वर्गी ए वी इहो जी कहन लगी फरीद की पुछदा है मां मैनू ए दस वे रब टुटदा किवें। इस माई ने कहा फरीद जिस दिन किसे साई दे प्यार वाले दे दर्शन हो जाए किसे बख्शे रूह दे दर्शन हो जाए किस दिन खुदा परस दे दर्शन हो जाए साई दे चरना नाल जिसका मन जुड़िया है फरीद जिस दिन उस महापुरुष दे दर्शन हो जाए तो समझ लै के अज मेरे उत्ते रब तुठा है आखो श्री वाहे रब तुठे दी निशानी रब तुठे दी ओए किरपाल स्वामी मेरे स्वामी किरपाल हो गया तो दिता की हजूर फरमाउंदे ने होए किरपाल स्वामी मेरे संता संग चाहे वो त्यागी है चाहे गृहस्थी है गृहस्त मैं चिंत उदास अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार चाहे किस कर्म दी बाबा जी बख्शिश कर दे सन भाई ए तो दात है जिसनों मिल जाए तो समझिए अज रब तुठे रब तुठे दी ए निशानी संता संग विहारे। अच्छा मां साई दे प्यारे दे दर्शन होए लाभ की होया इस माई ने कहा तीन लाभ प्राप्त होंदे पहला ता बख्शियां रूहां दे दर्शन करके जीवन च ठंड पै जांदी उठ फरीदा गवन कर दुनिया वेखण जा मत कोई बख्शिया तुद मिले तू भी बख्शिया जा दर्शन करके साध के संग नहीं किच काल दर्शन पेटत होत निहाल किसे माया तारी दे दर्शन करो ना ओदी अमीरत दा असर पैंदा है मन चंगी कार है सूट चंगा पाया है हद दे विच चंगी अंगूठी पाई है हीरे वारी फिर ओदी अमीरत दा असर पैंदा है पर ए अमीरत ए झूठी अमीरत ए सदा रहन वाली नहीं दुनियावी तन ए असर रहन वाला नहीं हजूर कहना काचा तन संचे मूर गवार जिसने इस तन नु सब कुछ समझ इस तन दा खंडन नहीं है ए ना कोई समझे पर प्यारी साध संगत निर्वाह मात्र बाबा जी कहंदे सन इस दी भी लोड़ है पर असलियत भी तो सच्चे धन दी लोड़ है इस तन नु पानी डोब देंदा है अग साड़ देंदी है चोर चुक ले जाएंगे पर जिन को सच्चा तन है इस तन को तस्कर जोए न साके ना उचक्का ले जाए इन को चुक नहीं सके अग्न न दहे पवन नहीं मगने तस्कर नेड़ ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कतो न जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर कबीर जी कहंदे ने ए है सार धन कही है जिन्हां कोल ए तन है ना उन्हां दे दर्शन कीतिया भी असर पैंदा है केड़ी चीज दा ए सच्चा तन है नाम रूप

कछ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। उस सहज अवस्था नु प्राप्त करने वास्ते गुरमुख ने एक मंजिल तय करनी, इस रस्ते ते तुरना है। गुरमुख का अपना एक रस्ता है, उस रस्ते दिया पैड़ा गुरु नानक ने छड़िया ने। तुसा वेखिया कच्चे राहां ते एक बंदा लंघ जाए ना उहदे पैरां दे निशान पैंदे, दूजा वह बंदा जिसने वह पासा कदे ना वेखिया होवे इधर उधर झाकदा है, जिधर पैरां दे निशान नजर आउण उधर तुर पैंदा। पैरां दे निशान डबल हो जाण, दोहरे हो जाण। तीजे बंदे नूं इउं जापेगा जिवें इथों कोई एक नहीं कई जने लंघे, तीन बंदे चार बंदे लंघणगे पगडंडी बन जाए। जिसने तीन चार दे मगर लंघदियां लंघदियां उस पगडंडी ते लंघदियां लंघदियां सैकड़े बंदे लंघणगे ते राह बन जाए, जिसने हजारां लंघणगे ते शाहरा सड़क बन जाए। धन गुरु नानक ने तुहाडे वास्ते इक शाहराह दा मुढ बने, गुरमुख दे मार्ग दा मुढ बने। उस मार्ग ते गुरु नानक साहब भाई मरदाने नूं नाल लैके तुरदे ने पए, ते गुरु नानक साहब दे मगर भाई मरदाने दे मगर मगर किते राय बुलार तुरे जांदा नजर आउंदा, किते महाराज शिवनाभ तुरे जांदे नजर आउंदे, किते भाई भगीरथ तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते भाई बूढ़ा जी जांदे नजर आउंदे। इन्हां सारिआं ने मिलके गुरु नानक दे मगर तुर तुर के इस पगडंडी नूं शाहराह दा रूप दित्ता है। साडे वास्ते बड़ी बड़ाई सड़क है, गुरमत गाडी राह है। इस गाडी राह ते तुरन वालिआं ने एक मंजिल ते पहुंचना है। जिहड़ा बंदा उस मंजिल ते पहुंचण दी तीव्रता लैके नहीं तुरदा, हौली चाले तुरदा या तुरदा ही नहीं, उस बंदे नूं सोचना चाहिए। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहिंदे ने

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਛਲਦੇ ਆ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇਜ਼ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਮਨ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੜ ਕਾਹਦੀ ਪਈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਲਖਨੰਦਾ ਵਗ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਗਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਈ ਤੋਂ ਲਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਵਗੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਪਰੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਈ ਤੋਂ ਲਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਿਧਰੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਿਧਰੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਪਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਧੁੱਪ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੀ ਏ, ਕਤਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਤਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਾਗਰ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚ ਫੈਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਯਤਨ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਠਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਤਰੇ ਵਹਿਣ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਗਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੀਵ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਨੇ, ਸਫਲ ਨੇ, ਮਗਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਾਡੀ ਮਾਰਗ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਪਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਹ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਹਿਜ ਘਰ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਏ। ਆਪਾਂ ਸੋਧਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਿਰਾਸਤ। ਰਾਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ, ਸੱਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸਤ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹੇ ਰਾਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ। ਰਹੇ ਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬਣਿਆ। ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਰਾਸਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਪਏ ਪਾ ਖਾਕ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ।
गुरु चरणा की खात ही हो जाए कि भला भाई जी धर्म के मालिक ते चलन वालों के अपने अपने असूल ने। सिख का भी असूल है, गुरमुख का भी असूल है, ते हर धर्म वाले ने, हर धर्म वाले ने इशनान नूं बड़ी महत्ता दिती है। गुरमत विच भी कहा गया गुरमुख नाम दान इशनान। भाई साहब जी सिख का नहाना की, सिख का इशनान की? भाई साहब कहंदे ने, कहंदे ने गुरसिख का इशनान, गुरमुख का इशनान यह है कि निरा बाहरों ना अपने आप नूं साफ करे, ये निरा साबण दे नाल शरीर नूं ना साफ करे। धन गुरु नानक कहंदे भरिया हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सुखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लईऐ ओ धोए। इसे तरह भरिया मत पापां के संग, ओ धोपै नावे के रंग। शरीर गंदा हुंदा है, कपड़े गंदे हुंदे ने, साबण नाल साफ कर लैने। मन गंदा हो जावे ते नाम दे रंग नाल धोता जांदा है, साफ करना है। मन भी जरूर साफ करना है। भाई साहब कहंदे ने गुर मत लै, गुरु की मत लै के माड़ी मत दुरमत कुमत नूं अंदरों धो के बाहर कढ दिंदा है। सिख दा असली नहाउणा तां इह वैसे तां सिख वास्ते है कर इशनान, सिमर प्रभ अपना मन तन तहे अरोगा। तू बाहरला इशनान करेगा तेरा शरीर अरोग रहेगा, तू मन दा इशनान पाणी द्वारा करेगा तेरा मन अरोग रहेगा। इस दोहरी अरोगता वास्ते दोहां पक्खां तों हाइजीनिक पक्ख नाल मन दी हाइजीन इस गल विच है कि मनुख मन नूं पापां तों साफ रखे, ते तन दी हाइजीन इस गल विच है कि इस नूं गंदगी तों साफ रखे। अज नारे लगदे ने शहरां नूं साफ रखो, गलियां नूं साफ रखो, घरां नूं साफ रखो, शरीर नूं भी साफ रखो। लेकिन जे मन साफ ना कीता ते बाहरली सफाई बेकार होके रह जाए। भाई साहब कहंदे ने गुरमत लै दुरमत मर धोवे। अच्छा भाई जी ये तां हो गया इशनान हो गया, हुण पूजा करेगा। धर्म दे मार्ग ते चलण वाले दी पूजा भी तां कोई हुंदी है, गुरमुख किस चीज दी पूजा करेगा? भाई साहब कहंदे ने गुरमत अनुसार कहंदे ने गुरसिखी दा पूजना गुरसिख पूज पिरम रस भोवे। गुरसिख गुरसिख दी ही पूजा करे, क्योंकि गुरसिखा अंदर सतगुर वरते। जो सिखा नूं लोक जो चाहे सो गुर खुशी आवे, जिन्हें गुरु की खुशी लैनी हो गुरसिखा की खुशी लवे। गुरसिखा की पूजा सेवा करने वाला गुरु की पूजा सेवा करता है। वैसे साहब कलगीधर पातशाह जिसने सिखा ने पूछा सी नंदेड़ विखे महाराज जी पातशाह ने कहा सी गुरसिखो करनी पूजा अकाल की, दीदार खालसे का परचा शब्द का। जिन्हां ने पूजा करनी है अकाल पुरख की पूजा करनी, मगर अकाल पुरख तो नजर नहीं आता किने विचों करी। साहब कहन लगे सिख की पूजा करोगे गुरु की पूजा होगी, गुरु की पूजा अकाल की पूजा है। कि महाराज फिर जिदे चरनी ला चले हो, गुरु ग्रंथ साहब के मत्था टेकन वास्ते कह रहे हो, यदि पूजा नहीं करनी। साहब कहन लगे यदि निरी पूजा नहीं करनी, निरे धूप दीपदा देंदे रहना, इनू समझना। इस शब्द विच भाई साहब की इस पौड़ी विच अंतली तुक सार तुक है साध संगत गुर शब्द विलोवे। गुर संगत नाल रल के गुरमुख गुर शब्द नूं रिड़के नाम प्राप्त करन वास्ते, नाम दा मखण लैण वास्ते, नाम दा रस लैण वास्ते। गुरमुख गुर शब्द नूं रिड़के, हुण जिहड़ा गुरमुख माफ करना गुरमुखी नहीं पढ़िया वह गुर शब्द नूं किवें पढ़ेगा? असीं सारा कुछ चार चार पंज पंज जबाना पढ़ लैने, हिसाब पढ़ लैने, बड़ा कुछ पढ़ने हैं, लेकिन गुरमुखी पढ़ने वास्ते जो सिख नूं वक्त नहीं ना समझ लेना आदि इस राह ते तुरन का जतन नहीं कर रहे, नीयत बनी नहीं अजे। गुरमुखी पढ़नी ते गुरमुख बन के गुरसिखी दे विच प्रवेश करना, गुरबाणी नूं विचार सहित पढ़ना, गुरबाणी नूं समझण दा जतन करना। महाराज पंचम पातशाह नूं सिखां ने पुछिया सी महाराज बाणी पढ़न ते की लाभ ने? साहिब गुरु अर्जन साहब ने दस्सिया सी जिहड़ा इच्छा रख के पढ़ेगा ध्यान देना, इच्छा रख के पढ़ेगा सो पदार्थ पाएगा। असी आम तौर ते इच्छा रख के पढ़ने, असी बाणी पढ़ने हां कोई ना कोई मकसद सामने आउंदा। महाराज कहंदे ने मकसद पूरे हो जाण, जिहड़ा इच्छा रख के पढ़ेगा उहदे मकसद पूरे रहे। ते महाराज कहंदे ने जो विचार सहित पढ़ेगा सो ज्ञानवान हो, जिहड़ा बाणी नूं ध्यान नाल विचार के पढ़ेगा वह आप बंदा बड़ा समझ वाला अकलमंद ते प्रभु नूं समझण वाला हो जाएगा। विचार सहित पढ़ेगा सो ज्ञानवान होवेगा, प्यार सहित पढ़ेगा सो मेरे नेड़े होवेगा, श्रद्धा सहित पढ़ेगा सो प्रभु के नजदीक होवेगा। गुरसिखां ने प्यार नाल भी पढ़िया, श्रद्धा नाल भी पढ़िया,
विचार नाल भी पढ़िया है, इच्छा करके भी पढ़िया, लेकिन सब तो श्रेष्ठ वो है कि विचार सहित और श्रद्धा सहित कट्ठा पढ़िया जाए। विचार ते श्रद्धा जिथे रल जान उथे गुरमुखताई गुरसिखी शुरू होती। भाई साहब पूजा तो हो गई गुरसिख की, धन गुरु नानक जिस वेले सालसराय कोल पहुंचे ने, पहुंचे तो किस तरह आप जानते, भाई मरदाना हीरा लैके पहुंचे। सालसराय ने 101 रुपया उस हीरे की भेटा रख दी, कहता मैं मुल नहीं पा सकता, हालांकि मुल पाने वाले ने गाजरां मूलियां भी पाया, मठियाई का शेर देने भी तैयार सन, मगर जौहरी ने मुल नहीं पाया। वह कह लगा एडा कीमती हीरा का मुल नहीं पाया जा सकता, 101 रुपया भेटा दे सकना, मेरे बजुर्गों ने कहा कदे यह हीरा वेखे तो भेटा रख दे। भाई मरदाना भेटा लेके पहुंचे, एक दो फेरे भाई मरदाने के बचे सालसराय महाराज के चरणा च हाजिर होया, अपने नौकर नू नाल लेके दुकान बंद करके महाराज के चरणा विच आ गए। बड़े वचन विलास हो, कई दिन महाराज फिर एदे घर विच टिके। ओही सालसराय धर्म सालसराय जौहरी की धर्मशाला मुड़के साहब कलगीधर पातशाह का जन्म स्थान बन गए। पटना साहब विखे पवित्र स्थान से महाराज कुछ दिन टिके। वह कुछ दिन टिकिया टिकिया सालसराय के नौकर अधरके नू ज्ञान हो गया, उन्हू मस्तियां प्राप्त हो गई। सालसराय ने वेखिया कि मेरा नौकर इस वेले बड़े उच्चे मंडलों च उडारियां ला रहे, हथ बन के कह लगा साहब नू, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नू कह लगा, पातशाह आपने अपने सेवक ते मेहरां कीतियां ने, मेरे इस चाकर ते मेरे इस नौकर ते बड़ी कृपा कीती है, इनू ज्ञान बख्शिया, इनू नाम बख्शिया, इनू बड़ी उच्ची सुरत बख्शी है, मेरे ते भी कृपा करो। धन गुरु नानक कह लगे भाई अभी तो हूं चले हाँ, हूं तू ए चरनी पै जा, ध्यान दे हूं तू ए चरनी पै जा। कह लगा महाराज नौकर दे चरनी पाउंदे हो मालिक, मेरे कोलों लैके खांदा है। धन गुरु नानक हस पाए, कह लगे रुपये तेरे कोलों लैके ए खांदा रहे, नाम इहदे कोल लैके तू लै लै, ऐस वेले नाम वालों यह धनवंत है रजिया होया, यह इथों पहला प्राप्त करके रजिया होया, रुपये तेरे कोल सन ते मंगदा रहा लैंदा रहा चाकर बनिया रहा, लेकिन जे नाम लैना ही भाई असी तां चले हां सालसराय, जे नाम लैना है।

Roshi Misat, Chakri Kene Arvar Najat, Harpat Nehenye, Uparangya Rari Kripe, Pukana Satyah, Achal Mursan Vahaprakash, Amitul Kehenja, Pukh Sindhanendran, Shahu Shahan Ganeja, फिर भवन में ही सुरनारायासुर नीत नीत मंडन कह सब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समाज सतगुरु आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर प्रभु तो द्वारी लेखा छोड़िया लेखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सब नामी आवारी नानक दास संत पाछा करियु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दया का श्रद्धा पूरिया सतगुर हुई दया ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग मानिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के सतगुर हुई दयाल ता सद ही सुख दया सतगुर हुई दयाल ता नवनिध पाइया

0: अपने पद करें प्रतपाला अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई
1: भाई जी का हंसा।

जब लवनी आग मिलार उठे तब लव भरम पे फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो सत विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ अनगुरु नानक पातशाह अनगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और नेड़े कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार न सारे आपको अनगुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगत के सेवादार पातशाह हुक्म करो हजूर कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे ने ही बनाए अब गुरु की संगत की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु जी और संतान वास्ते आप चक्की थी आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसी सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे तो संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुकम मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संता की सेवा करनी है तो तुम भी ठंडे जल की गागर पर जिते संगत को भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाता है अज पंजवें गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दस गुरु को यह जाना है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी चार सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात गंगा जी सुना ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बख्शिश की थी माता गंगा जी कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है फेरी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा